मजद खुदाय अरे मनवा चांद दूर वजदास्तार जद शिकस्ते बाद अरे मंदेवाम दरु जान जादुवान दरवंदान की कान करफान सास्तारान गुनेगरान अश्मोगान दरवंदान दुश्मन फ्रियान जद शिकस्ते बाद दुष्पाचान वाचान बाद दुश्मन सतो बाद दुश्मन वाचान बाद और मजद खुदाय अजम गुना पतित पशेमानुम अजवरस्तीन दुश्मन।

जिंदगी के हर लम्हे को तुम ही ने तो सवारा है, हर पल में एक मीठा एहसास तुम ही से तो छाया है, मौसम की हर बदलते रुख में तुम्हारा ही तो साथ पाया है, ऐसा ही हर सुर हर साज में बस तुम्हारा ही तो गुणगान आया है, तुम ही हमारे प्यास हो और हमारे जीवन का आधार हो, कैसे दूर रहे ओ भगवन कैसे दूर रहे।

0: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
1: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
2: Suhi Mahalla Chautha Karshema Eko Vankar Sadgur Parsad नीच जात हर जपतिया उत्तम पदवी पाए पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए हर किया कथ कथा सुनो जन पाई जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ रविदास चमार उस्तत करे हर कीर्त निमख एक गाए पतद जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए नाम दे प्रीत लगी हर सेती लोक शिपा कह बुलाए खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे हर नाम देव लिया मुख लाए जितने भगत हर सेवका मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए जन नानक तिन को वंदन परसे जे कृपा करे हर राए सूही महला चौथा तिनी अंतर हर आराध्या जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा तिनकी बखीली कोई क्या करे जिनका अंग करे मेरा हर करतारा हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे ते सहलत पलत मोहकारा से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक पवे इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीड़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सुही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होर तबिद लया ना जाई हर तन संचिय पाई जे हलत पलत हर होए सिखाई रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है होर थे होरत उपाय हर तन कित ना पाई हर रतन का वापारिया हर तन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाके हर तन लया ना जाई हर तन रतन जिवे हर माणक हर तन नाल अमृत वे लैवत हर भगती हर लिव लाई हर तन अमृत वे लैवत का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही हालत पलत हर तन की भगता को मिली वड्याई हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी है जमदूत किसे का गवाया ना जाई हर तन का उचक्का नेड़ ना आवई जम जा गाती डांड ना लगाई सागती पाप करके बिखिया तन संचिया तिन्ना एक विख नाल ना जाई हलते विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया अगे पलत सागत हर दरगे टोई ना पाई इस हर तन का साहू हर आप है संतो जिसनों दे सो हर तनो लद चलाई इस हर तन का तोटा कदे ना आवई जन नानक कौ गुर सोजी पाई सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवै सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसते पाइए परम निदान जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे सो नेफल सब अगे

उनका उतर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराए तेहा हों करी वग्यान। सुही महला चौथा, कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा। तू साहेब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, जो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ। मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती। मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत लीजै, बकरी सिंह इक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जै। हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाने

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लही है मंत्र स चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक तो गुर कृपा तारी प्रभात दे निस्तारे सुही महला पंजवा करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता महल ना पावे कहतो पहुता जो प्रेमाने तिनकी रीसा कूड़े मूर्ख पीहा ठीसा रहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे अतीत सदाए माया का माता।

अमृत वर्खा गुहज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवां जा कै दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग इहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जमदूत बिदारे जा की तीरक इसमने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे सरन नानक तिन सद बलिहारे सूही महा

चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवां, आठ पहर तेरे गुण गावां, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा, जां कै सिमरन कछ भउ ना ब्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवां, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ। साध संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करने आधारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी, कहो नानक कहो तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। सूही महला पंजवां, लोभ मोहे मगन अपराधी, करनहार की सेवना सादी, पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोहे निर्गुणियारे।

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत विकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परण पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साज सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, घर का काज

पंचमा दर्शन कौ लुचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई प्रेम विशोहा करत गसाई। निर्दय जंत तिस दया ना पाई, अनक जन्म बीतियन परमाई करवासना देवै दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष न दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही।

पावै। जन की महिमा केतक वर्णो जो प्रभु अपने पाणे, कहो नानक जिन सतगुर भेटिया से सब ते पए निकाणे।

ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सूही महला पंजवा सगल त्याग गुरसरणी आया राखो रख नहारे जे तू लावे ते तम लागे क्या ए जंत विचारे।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्यां इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

0: तै पावै, ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंतना साहेब सिमरिया जाई, सुरत मत नाही चतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई, खरी सयाणी कंतना पाणी, माया लागी परम पुलाणी, हौ मैं जाई ता कंत समाई, तौ कामण प्यारे नमनिध पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै लेहो प्रीतम प्रबराया, पंत नानक सौ है पी होसी, जय पावै प्यारा तैं रावेसी।
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2: On October 10, 2002, students of Swami's Music College, the Sri Satya Sai Mirpuri College of Music, presented before him a musical program. Radio Sai now brings you highlights from this program.